क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:28 on the clock. It's been a partly sunny start to this Thursday morning and 31 degrees Celsius right now. Humidity is quite high, 75% per winds blowing at 5 kilometers per hour. Highs at 34, lows of 30 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Creditmarket.ae. Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: ठीक सवा आठ ऑन दिस थर्सडे की सुबह, 31 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस जुमारात, ह्यूमिडिटी एट 74%, वेरी हाई। एनसीएम ने कहा था कि इस हफ्ते किसी ना किसी दिन कभी ना कभी बारिश होने के चांसेस हैं। फ्यू डेज अगो अलेन वाज लैश्ड विद लॉट्स ऑफ रेन एंड अ बिट ऑफ हेल एज वेल। राइट नाउ विंड्स 6 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 34, लोज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस।
6: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: देसी लोग जब कॉल करते हैं कोई दोस्त तो पूछते भी क्या चल रहा है, वही चल रहा है यार, सेम ओल्ड थिंग इज विद दुबई, इट इज नेवर सेम ओल्ड
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड नाउ इज शाहरुख रेजिडेंसेस बाय डैनियल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है रोज, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कभी कभी एवरी आवर अगर निकाला जाए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि यार अब ये नया होने वाला है। येस्टरडे देयर वाज अ टीजर दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एंड या देयर इज अ मिस्टीरियस कंस्ट्रक्शन दैट इज हैपनिंग क्लोज टू दुबई मॉल एंड नाउ इस पर से हल्का सा एक स्नीक पीक, पर्दाफाश तो नहीं हुआ लेकिन स्नीक पीक मिला है कि इट इज गेटिंग, दुबई मॉल इज गेटिंग अ न्यू प्लाजा एंड होटल। And there is that little video that is doing the rounds. And this video mein bataya gaya ki this is not just any other tower. It's going to be a skyscraper, one more skyscraper in Dubai. But this one, how is it going to be different? Is that it is going to be the most beautiful one yet. That's what we know so far. The destination is going to be downtown Dubai ka shopping district, Dubai Mall Plaza and Hotel. That itna hi pata hai, bas that's it. Skyscraper hai and it is going to be a beautiful is all we know about that project. Lekin aap jante hain, aisi hawa mein to baat karte nahi hai. So of course, it is going to be something really to look forward to.
2: Tumhi din chale, tumhi din dhale, tumhi ho bandhu sakha tumhi.
0: Dubai Mall is now going to have a new plaza and hotel, and what are you going to have in this hour coming up in just a few minutes? This song Bandhu 2.0 from Cocktail 2 also coming up on the show is the big Bollywood quiz.
1: Big
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
4: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
5: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
4: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Have you got what it takes to say stop?
6: Are you kidding?
1: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 8:28 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलेगा at Musaffar Industrial E30 पर, and this is heading south going away from Rabdan. A bit of northbound traffic also going towards Musaffar Industrial on E30. इसके अलावा everything else seems to be quite smooth going. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. You'll find the usual 311 का northbound traffic Dubai south पर, and इसके अलावा 311 11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these hotspots पे आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर, थिंग्स आर लुकिंग मच मच बेटर ऑन E88, 37 मिनट से कम होके ट्रैफिक का डिले इज अराउंड 14 मिनट्स नाउ, अभी भी है लेकिन इट्स कंपैरेटिवली मच मच बेटर, राइट? सेफ जोन की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक इन द डायरेक्शन ऑफ शारजा एयरपोर्ट, यू विल फाइंड दिस 14 मिनट ईस्ट बाउंड ट्रैफिक ऑन E88.
7: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
8: Big 106.2.
9: Prem bhai,
10: are gira to.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। ताने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम। क्लियर है विजन मेरी, आई डोंट नीड नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम। दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, day one, lifestyle, A1, ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है।

0: जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. Live life, king style.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: अपनी बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेज सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
4: Golden dreams begin with Big Ticket.
5: A guaranteed 25 million dirham grand prize.
4: 5 consolation prizes, 200 grams of 24 karat gold each.
5: And more gold to win in weekly intros.
4: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
5: Buy your ticket now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
8: The Big Mix, miss kiya gaya?
9: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
10: हाय मोनिका।
11: हाय।
10: आपकी रील्स देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देखकर मैं मूवी देखने जाती हूँ एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम। अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनरा की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए।
11: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है, तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ। तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है। तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920, ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूसबम्स। देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था। इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है। एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म। एंड देन भूत उर्मिला की, If you have watched, तो ये मेरे को बहुत, उसमें भूत से ज़्यादा उर्मिला देख के डर।
8: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
12: It is 9:29 on the clock and let's take a look सबसे पहले at superstar of traffic जो रोज सुबह होता है। E88 पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आजकल होने लगा है, लेकिन अब शुभंतर, there is no congestion out there. Congratulations to all those people जो कि east bound हैं, going in the direction of Sharjah Airport. Industrial Area 6 in Sharjah, Industrial Area 7, University City पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक S112 पर, 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah, 4 से 5 मिनट का expected traffic, लेकिन a bit more than expected, D88 पर आपको traffic मिलेगा, and there's a slowdown on Trade Center Street as well, and E11 पर also a bit of southbound traffic you'll find around Business Bay. बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन के आसपास भी आपको जो सड़कें हैं यहाँ पर मिलेगी आपको 4 से 5 मिनट की देर, एंड D71 ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल यू विल फाइंड अ 5 to 6 मिनट डिले।
2: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
13: Big 106.2.

0: जिंदा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:07।
1: Bollywood.

0: हॉलीवुड।
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
4: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
5: Lagta hai barf padne wali hai.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
7: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: मॉर्निंग, इट्स 10:17 ऑन द क्लॉक एंड इट्स बीन अ पार्टली सनी पार्टली क्लाउडी स्टार्ट टू

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

बस एक बार आपको एक बिजनेस लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आपको बिजनेस के लिए और क्या चाहिए? मैं बताता हूँ क्या चाहिए यार, आपको लाइसेंस के बाद ऑफिस स्पेस चाहिए टू ऑपरेट, उसके बाद वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, एंड देन मतलब व्हेन इट रियली स्टार्ट्स टू स्केल, इंडस्ट्रियल लैंड कहाँ से लाओगे व्हेन यू नीड ऑल अंडर वन रूफ? मैं बताता हूँ कहाँ से लाना है आपको, उमर क्वेन फ्री ट्रेड जोन, मोर देन अ बिजनेस लाइसेंस, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइंड टू हेल्प बिजनेसेस नॉट जस्ट स्टार्ट बट ऑपरेट एंड स्केल इन द यूए, सो इंपॉर्टेंट एंड अफोर्डेबल बिजनेस लाइसेंसिंग सोल्यूशन से लेकर offices, warehouses, industrial land. Umal Quain Free Trade Zone supports your business as it grows with corporate tax benefits, one ecosystem, different stages of growth. Umal Quain Free Trade Zone built for businesses that are ready to grow. I am now ready to go. I'm going to see you for one last time this week, tomorrow morning, sharp at 7 on the show that's not called The Big Breakfast with Sid. It is called Shah Rukh's Residences by Danube. In the meanwhile, don't forget to follow us on socials via 106.2 Big FM. I'm Sid Seth, SID SETH. Till tomorrow, enjoy the rest of your Thursday. Bye-bye.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौट आएगा?
2: यही 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: This is Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Have you got what it takes to say stop?
1: Are you kidding?
0: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: Kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
3: Hi Ahmed.
4: Hi Amin.
3: So kya choose karoge Ahmed aap? Malai kofta ya kadi chawal?
4: Malai kofta.
3: Malai kofta ya fir mushroom masala?
4: मशरूम मसाला.
3: मशरूम मसाला या सोया चाप?
4: मशरूम मसाला.
3: मशरूम मसाला या दाल मखनी?
4: दाल मखनी.
3: दाल मखनी या बटर चिकन?
4: बटर चिकन.
3: बटर चिकन या बटर चिकन बिरयानी?
4: बटर चिकन.
3: बटर चिकन या मटन बिरयानी?
4: मटन बिरयानी.
3: मटन बिरयानी के ऊपर क्या जाएगा, मटन बिरयानी या ओट्स?
4: अभी तो मटन बिरयानी, ओट्स नहीं.
3: आपने कहा था कि आपकी वाली बहुत अच्छी बनाती है, मुझे लगा शायद आप उनकी डिश ऊपर चूज कर लो.
4: नहीं नहीं, मटन बिरयानी में बेहतरीन लाजवाब बनाती है.
3: ओ, तो इसलिए मेरे बाप को चूज नहीं करना पड़ा कि कोई बात नहीं, दोनों में ही उनकी तारीफ हो रही है.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: टू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाट्सएप योर नेम स्पेस योर सॉन्ग एंड योर मैसेज टू 0543091062। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:10
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetho T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Big 106.2. Big 106.2.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: It's quite hot outside, 34 degrees as of now, but with humidity levels of 56% and is humidity ki wajah se na 34 jo hai 50 feel ho raha hai.
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and Coffee with Karan season 9 का पहला एपिसोड आ चुका है. कहाँ पर? Stars Play पर आप देख सकते हो उसे. First episode में सलमान खान आए हैं. कसम से यार, क्योंकि ये आखिरी सीजन है season 9 of Coffee with Karan, इस काउच पे बहुत सारी टी स्पिल हो चुकी है कल के एपिसोड में. And that was actually सलमान खान telling कि भाई मैं मेरे घर में एक घोस्ट के साथ भी रहा हूँ. And it was okay. मतलब घोस्ट को भी बोल दिया होगा भैया, यू नो इट्स डन ब्रो. हार्डेस्ट पार्ट कि हमें नेक्स्ट एपिसोड तक का वेट करना पड़ेगा. बट जस्ट फॉर दैट, स्टार्स प्ले पे बहुत कुछ और अवेलेबल है चेकआउट करने के लिए, बिंज वॉच करने के लिए, सब कुछ जो अभी तक हम नहीं कर पाए थे. कौन कौन से शोज, कौन कौन सी फिल्में हैं बताती हूँ इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
1: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
0: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर

0: purchase a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and this time आप Stars Play पर बहुत कुछ देख सकते हो. There's another section on that's called Jio Hotstar section. वहाँ पे आपको सारे वेब शोज फिल्म्स मिल जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे थे. एंड जस्ट नॉट दैट, द बेस्ट वीकेंड पता कौन सा होता है? जब आप इतनी बढ़िया वेब सीरीज देख रहे हो लेकिन आंखें थक चुकी हैं, बट यू वॉन्ट टू नो मोर कि भाई अगले एपिसोड में हुआ क्या. मान जाओ भाई, मान जाओ. देयर इज अ लॉट टू वॉच ऑन स्टार्स प्ले. असुर नाम की एक वेब सीरीज है, बहुत बहुत फेमस है, क्रिटिकली इनक्लेम्ड है. जस्ट नॉट दैट, स्पेशल ऑप्स है. लेकिन अगर आपको थ्रिलर जॉनरा से हटके कुछ अलग देखना है, चिरैया इज दैट वन मोर सीरियस कॉन्वर्जेशन स्टार्टर जो मिस नहीं करना चाहिए. उसके साथ साथ और मूवीज हैं एंड वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म इज केसरी चैप्टर 2. क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी भाई इस फिल्म से एंड क्या डिलीवर किया है इस फिल्म ने. हैट्स ऑफ, आई एब्सोल्युटली लव्ड अनन्या पांडे एज वेल इन दिस फिल्म. है ना, शौक होता है ना, अनन्या पांडे केसरी चैप्टर 2 में थी. यस थी. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, गो गिव इट अ वॉच. देन सुपर 30 ऋतिक रोशन की ये फिल्म भी आपको वहां पर मिल जाएगी. एंड ये सारा सिलेबस जो है आई गेस दो दिन में खत्म हो सकता है. सिलेबस खत्म होना हो आपकी पढ़ाई का, लेकिन बिंज वॉच का सेशन तो खत्म हो ही जाएगा. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: होगी ही सैड किसी और जमाने में, लेकिन फिलहाल तो वो दिवाली सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड दिस टाइम दिवाली सेलिब्रेशंस आर गेटिंग बिगर। द बिग दिवाली मेला इज बैक। आप भी ज्वाइन कर सकते हो टीम बिग को सैटरडे 31st अक्टूबर एट ओएसिस मॉल दुबई, जहां पर आपको फुल फन मिलेगा, गेम्स मिलेंगी, फैबुलस फैशन शो भी होगा, आपके बच्चे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जीत सकते हैं मिस्टर पटाखा एंड मिस फुलझड़ी का टाइटल। जस्ट नॉट दैट, इज गोना बी स्पिन द व्हील एंड ऑफ कोर्स लोड्स ऑफ फेस्टिव एंटरटेनमेंट। अपनी फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ एंड सेलिब्रेट करो दिवाली हमारे साथ। द बिग दिवाली मेला इज प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरीज विद ओएसिस मॉल दुबई एज अ वेन्यू पार्टनर। द बिग दिवाली मेला, जहां पर सेलिब्रेशंस और भी बड़ी हो जाती हैं। सो दिस टाइम लेट्स नॉट ट्रो Keep it locked to Big 106.2, part of Fun Asia's global media network.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:08
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Got what it takes to say stop.
3: Are you kidding?
4: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
2: Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2.
4: Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids' fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and Big Diwali Mela is back. If you think your child, your little one has what it takes to be our Mr. Pataka and Miss Fuljadi, तो आपको participate करना है यहाँ पर. कैसे कर सकते हो? Type करो Big Diwali space your name और भेजो इस WhatsApp number पर 0543091062. The Big Diwali Mela presented by Papa John's, powered by Solite Batteries at Oasis Mall Dubai, our venue partner. बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन करनी है. नंबर रिपीट कर देती हूँ 0543091062. एंड मिस्टर पटाका, मिस फुलझड़ी जीतेंगे प्राइजेस वर्थ 500 dirhams. जस्ट नॉट दैट, एवरी पार्टिसिपेटिंग चाइल्ड विल वॉक अवे विद अ हैम्पर. पार्टिसिपेट के लिए रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. 0543091062. होगा 31st October सैटरडे को दुबई ओसिस मॉल में. We are here to find our Mr. Pataka and Miss Fuljadi. Keep it locked to Big 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुलाहट, झुबुदाईशन मिलाई।
2: Beat 106.2, the beat of Bollywood.
3: मैं दीवानी कुछ न जाना, मस्त होके गावा।
2: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
4: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से sea facing view. फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: If you're traveling towards downtown Dubai या फिर आप media city की तरफ जा रहे हो, extra time लेके चलना पड़ेगा because यहाँ पे patchy traffic मिल सकता है। उसके अलावा there's a heavy congestion on E311 Hesar Street, Al Khail Road and the routes connecting Dubai and Sharjah। कहीं और फंसे हो, let me know, call करके 800-1062 पर।
6: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. Big 106.2.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, अगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: participate in the big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids' fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and Big Diwali Mela is back. और इस fashion show में हम ढूंढ रहे हैं Mr. Pataka and Miss Full Jhadi. आज मैंने call किया है मित्तल को. Hi मित्तल.
2: Hi, कैसे हो अवनी जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने देखा आपकी WhatsApp DP में दो बहुत ही सुंदर बच्चों की फोटो लगी है.
2: हाँ, यस, माय टू डॉटर.
1: क्या एज है उनकी?
2: एक का 9 और एक का 6.
1: और दोनों को करना है पार्टिसिपेट?
2: यस, दोनों.
1: तो एक पर हमें तो एक ही मिस फुलझड़ी मिलेगी ना?
2: तो एक को मैं क्या करूँगी?
1: तो आप दोनों को एक दूसरे से कम्पीट करवाओगे?
2: हाँ, नो प्रॉब्लम, दोनों सिस्टर ही है ना, सिबलिंग सिस्टर.
1: तो ये अच्छा, मुझे बताओ जरा, ये जो सिस्टर्स होती हैं इनमें लड़ाइयाँ नहीं होती कि कम होती हैं?
2: अरे भाई, मैं बोलती हूँ लड़कों से ज्यादा तो ये लोग लड़ाइयाँ करते हैं.
1: आप फिर एक और बहाना क्यों ढूंढ रहे हो?
2: अरे नहीं, उसमें तो लड़ाई नहीं करेंगे, घर पे करते हैं. लड़के लोग क्या होते हैं, थोड़े शैतान होते हैं, फाइटिंग करके अपना लिपटा देते हैं. लड़कियां क्या होती है, नाराज होके वो एक बेडरूम में और वो दूसरे बेडरूम में नाराज होके चली जाएगी.
1: फिर आप में से मनाने कौन जाता है, मम्मी के पापा?
2: कोई नहीं, अपने दोनों वापस आ जाती है, आधे घंटे के बाद अपने आप खेलने आ जाती है. सॉरी,
1: दैट्स द ब्यूटी. हम जल्दी नाराज होती है लड़कियां, लेकिन फटाफट मान भी जाती.
2: हाँ, फटाफट मान भी जाते हैं.
1: चलो,
2: हम बीच में पड़ेंगे ना तो फिर बोलेंगे मम्मा तो उसको ही मनाने जाती है, मेरे को नहीं आती. उससे सही बात है.
1: ये पॉलिटिक्स कहाँ से सीखी आपने? ये आपने ऑफिस में सीखी है ये?
2: नहीं नहीं, ऐसे ही आ गया, फिर मालूम पड़ गया अभी मनाने जाना ही नहीं है. एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं सब कुछ.
1: सही में सीख गए हो. चलो हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन होता है नहीं होता है. आपको एक मैं सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. विच पॉपुलर राउंड स्वीट मेड फ्रॉम चिकपी फ्लावर, घी एंड शुगर इज अ स्टेपल ड्यूरिंग दिवाली?
2: घी एंड शुक्कर इज, घी और शुक्कर से कौन सी मिठाई बनती है?
1: हाँ, घी, शक्कर और दिस चने का आटा.
2: लड्डू, बेसन के लड्डू.
1: लड्डू, दैट इज एक्चुअली करेक्ट. अच्छा, लड्डू से मुझे याद आया, आपके बच्चों का निकनेम क्या है?
2: एक का नाम जिया है तो उसको मैं जीव बुलाती हूँ, एक का नाम रुत्वी है तो उसको मैं रुति बुलाती हूँ.
1: सेम हो गया ये तो.
2: हाँ, सेम ही, और कोई निकनेम नहीं पड़ा, क्योंकि फिर वो निकनेम पड़ता है ना तो लोग असली नाम भूल जाते हैं.
1: आप
2: क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरा निकनेम मेरी मम्मा पापा ने रखा था तो मेरा कोई रिश्तेदार मेरा असली नाम ही नहीं याद कर रहा.
1: आपका निकनेम क्या था, मुझे ये जानना है. अब
2: वो तो बहुत पहले के जमाने में तो वो बोलते थे ना, मेरा निकनेम तो धबूड़ी था तो लोग मुझे वही बुलाते.
1: धबूड़ी, इसका मतलब क्या होता है?
2: छोटी बच्ची, गुजराती में उसको बहुत छोटी बच्ची बोल. मेरी हाइट थोड़ी सी कम है ना सबसे, इसीलिए लोगों ने मेरा ये निकनेम रख दिया.
1: ये तो मैं मानती हूँ, धबूड़ी, धबूड़ी, राइट?
2: हाँ, यस.
1: इसके बाद मित्तल भाव, बहुत अलग अलग नाम है, हो सकता है. हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सही हो.
2: हाँ, यस.
1: लेकिन दिवाली के क्या प्लान्स हैं आपके?
2: ओ, बड़ी लड़की है ना, उसकी एग्जाम है तो पढ़ाऊंगी.
1: पढ़ाओगे, लेकिन आप दिवाली से पहले हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हो. 31st अक्टूबर
2: सेलिब्रेट करेंगे
1: ओसिस मॉल दुबई सैटरडे को. एंड आपका नाम क्योंकि रजिस्टर हो चुका है दोनों बच्चियों का, तो लेट्स सी कि हमें हमारी मिस फुल झड़ी किन में से मिलती है, ठीक है?
2: यस यस यस.
1: थैंक यू सो मच मित्र फॉर पार्टिसिपेटिंग.
2: थैंक यू, आपका भी कॉल आया, मैं इंतजार ही कर रही थी.
1: ओके, बाय
2: बाय बाय. थैंक यू.
1: अगर आपको भी अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना है इस फैशन शो में, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग दिवाली एंड स्पेस योर नेम. भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस, और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert, 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
4: Big 106.2.
1: Big 106.2.

0: टोनी कक्कड़ जितना मर्जी धीमे धीमे बोल ले, लेकिन जब भूख लगी हो, 3 बज चुके हो, लंच अभी तक किया ना हो, तो भाई धीरे धीरे नहीं खाया जाता।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ Avni आपके साथ. This is the Big Mix and time है we play खाओ पियो ऐश करो 3 PM peak lunch hour time.
2: खाओ पियो ऐश करो मित्रों.
0: Just not that, you also have a chance to win open movie tickets. करना क्या है आपको, मुझे मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर. नंबर लिख लो, याद कर लो, 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, खेलेंगे हम एक फूड डिश का रैपिड फायर राउंड. एंड क्योंकि आज है नेशनल शावरमा डे, बातें होंगी थोड़ी शावरमा की भी. 0543091062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. खाने की बात हो तो कैसे नहीं निकलता यार डांस. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. It's 3 PM peak lunch hour time हो चुका है. आज National Shawarma Day भी है. खाओ पियो ऐश करो भी हमने खेलना ही था. तो आज मैंने कॉल भी लिया है करण को. हाय करण.
3: हाय अवनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? खाना खा लिया आपने?
3: हाँ जी मैंने खा लिया.
2: क्या खाया आपने आज खाने में?
3: हमारे यहाँ सिंधियों में वो मेथी पुलाव बनता है, आज मैंने वो बनाया और वो खाया.
2: दैट्स अ न्यू थिंग. आई लव मेथी, आई लव पुलाव, पर मैंने साथ में कभी नहीं खाया ये.
3: डेफिनेटली इफ यू अलाउ मी अ चांस आई विल मेक इट फॉर यू.
2: प्लीज, खाने में कौन मना करता है? कौन सा पंजाबी मना करेगा खाने में, मुझे बताओ. ओके ओके,
3: कोई मना करेगा
2: और क्या. इट्स नेशनल शवरमा डे एंड आज आपके लंच प्लान्स के लिए एक डिलिशियस ट्विस्ट है. आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ जाना है. ठीक है, रैपिड फायर है.
3: Done.
2: दो ऑप्शन दूंगी, आपको एक चूज करना है.
3: करण,
2: व्हाट वुड यू चूज? क्लासिक गार्लिक सॉस और स्पाइसी मील विद शवरमा?
3: क्लासिक गार्लिक.
2: ओके, चीज लोडेड शवरमा या फिर क्लासिक शवरमा?
3: क्लासिक शवरमा.
2: शवरमा विद फ्राइज और शवरमा विद राइस?
3: फ्राइज.
2: ओके, अरेबिक शवरमा या फिर टर्किश डोनर?
3: टर्किश डोनर.
2: मिडनाइट शवरमा फॉर लंच और फॉर डिनर?
3: फॉर लंच.
2: फॉर लंच, ओके. शवरमा विद अनियन रिंग्स और फ्रेंच फ्राइज?
3: फ्रेंच फ्राइज.
2: अच्छा लास्ट, हाँ, फ्री शवरमा फॉर अ मंथ और फ्री बिरयानी फॉर अ मंथ? दैट्स अ टफ वन.
3: फ्री शवरमा फॉर अ मंथ.
2: भाई आज शवरमा डे, इतना तो इतनी इज्जत तो बनती है. अच्छा मेरा एक और सवाल है करण. यू आर टेलिंग मी कि आप एक शेफ हो, आप बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हो, है ना? तो मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे. जब मैं एक रेस्टोरेंट में गई और बैक इन इंडिया, मैंने खाए पता नहीं कौन से टाइप के वेज शवरमा. यहाँ पर पॉसिबल है, मिलेगा कहीं?
3: वेज शवरमा बेसिकली होता कुछ नहीं है. इंडिया में जो आपने खाया होगा दैट इज समथिंग कॉल्ड प्लांट प्रोटीन या पी प्रोटीन या वो सोया प्रोटीन, ये तीनों में से कुछ एक होगा. मोस्टली चांसेस हैं कि सोया भी नहीं होगी बिकॉज वही होती है वेज में, वही ऑप्शन होता है शवरमा में.
2: यहाँ कहाँ मिलेगा?
3: यहाँ पे मिल जाएगा, आप किसी अच्छे वेज रेस्टोरेंट में देखो. मैंने कभी ट्राई नहीं किया यहाँ पे वेज शवरमा, बट आई लुक इट आउट एंड आई डेफिनेटली लेट यू नो बाय दिस.
2: मुझे लगता है मेरे घर की किचन में बनेगा जब मैं बनाऊंगी.
3: नहीं मिल जाना चाहिए, वीगन रेस्टोरेंट, वीगन मतलब वीगनिज्म आजकल बहुत पॉपुलर है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, इतना बड़ा दुबई है.
2: चलो लेट्स होप, आज नेशनल शवरमा डे है, क्या पता आज ही मिल जाए, आज का दिन लिखा हो मेरे लिए वो वेज खाने के लिए.
3: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी पता करके बता देता हूँ कहाँ मिलेगा.
2: परफेक्ट, मुझे भेज देना 0543091062 पे. थैंक यू सो मच.
3: नाइस स्पीकिंग टू यू अवनी, बाय.
2: इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट खाओ पियो ऐश करो में, ऑल यू हैव टू डू इज सेंड मी अ मैसेज हियर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062.

0: Fix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Big 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आशा भोसले की आवाज़, संगन आम तक कमबख्त इश्क और कमबख्त। तो मुझे ये डिस्काउंट ऑफर्स लगते हैं यार, जब देखती हूँ ऊपर से फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है, ऑफर्स देखते लगता है नहीं वापस से मिलेगा यार, अभी ले लो। और आपको भी यही बोल रही हूँ।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड आपको पता है यार मेरे कितने शॉपिंग एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं कि मुंह से निकल जाता है।
2: क्या बात है।
0: और एक ऐसा ही आपको बताने वाली हूँ, दैट नाउ यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान। कितना अमेजिंग है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको विजिट करना है selfdrive.ak वेबसाइट पर, TNC अप्लाई। ड्राइव का नाम सुन के ना अपने आप ये वाले गाने मेरे दिमाग में लूप पे चलने शुरू हो जाते हैं, देन आपके साथ क्यों ना शेयर करूं मैं। कमिंग अप नेक्स्ट इज तू मेरी बाय विशाल ददलानी, आफ्टर दिस वन, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Got what it takes to say stop.
2: Are you kidding?
1: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital. Your health matters.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड कल फिल्म रिलीज होने वाली है फ्राइडे को नई नवेली. अरे नई नवेली फिल्म है लेकिन फिल्म का नाम भी नई नवेली है. अब फ्राइडे को कोई फिल्म न्यू रिलीज हो और मैं देखने ना जाऊँ. यामी गौतम स्टारर बहुत ही क्रेजी कॉन्सेप्ट है. बहू आती है लेकिन बहू जो है टू गुड टू बी ट्रू बहू है. अब वो बहू सच में है या फिर इट्स अ घोस्ट स्टोरी ये तो कल पता लगेगा. नई नवेली रिलीज हो रही है एंड अगर आपको इसकी टिकट्स जीतनी है ऑल यू हैव टू डू इज जाओ बिग एफ एम के पेज पर 106.2 बिग एफ एम ये है यूजर नेम दैट्स द इंस्टा हैंडल. पोस्ट हुआ है खुद को पार्टिसिपेशन के लिए पॉइंट्स दे दो और उसके बाद आप फिल्म टिकट्स जीतते हो या नहीं पता लग जाएगा यार कुछ ही देर में. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हमें बहुत मजे आते हैं यार नाच गाने पर जाने का नाचने का, लेकिन यार ये वाला मूड जो है ना वो कभी कभी मिलता है।
3: दौलत शोहरत क्या करनी।
2: कैलाश खेर आ रहे हैं दुबई एंड जस्ट नॉट अलोन, उनके साथ होंगी आबिदा प्रवीण।
4: जो आए तुम्हारी बज्म में, जो आए तुम्हारी बज्म में दीवाना हो जा।
2: दीवाना होने का टाइम आ चुका है। ब्रॉट टू बाय हॉप इवेंट्स, पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द लेजेंडरी आर्टिस्ट आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर लाइव, मतलब टू लेजेंड्स वन स्टेज। ये अनफॉरगेटेबल इवनिंग हो सकती है आपकी अगर आप टिकट्स बुक करते हैं प्लैटिनम लिस्ट से। वन इवनिंग टू लेजेंड्स वन स्टेज आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर, 13th November इट इज एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बुक योर टिकट्स राइट नाउ, इससे पहले सबकी सब सोल्ड आउट हो जाए। ये म्यूजिकल नाइट मिस कर दिया तो भाई लगता है सच में कि कुछ मिस आउट कर दोगे। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
5: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो नाम या दाम, नाम
6: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
1: Your golden opportunity with Big Ticket.
2: This month, we have a 25 million dirham guaranteed grand prize.
1: Five prizes, 200 grams of 24 carat gold bars.
2: Plus, even more gold in our weekly e-draws.
1: Three big spin participants could each win up to 1 million dirhams in cash.
2: Make your golden move. Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Subah utte अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
5: Missed your morning buzz?
6: I've got Sundar Raj with me on the phone line. Good morning, Sundar. How are you doing?
7: Yeah, fine, sir. Thank you. How are you?
6: I'm doing very well, but I can't wait to get into the cinema hall. Sundar, today is the release of Jailer 2. You're from Tamil Nadu yourself. So, mujhe batao, how are you feeling?
7: Tamil.
6: How are you feeling right now? Do you have goosebumps all over? Are you going to work? Yeah. Chutti maangi kya kar rahe ho?
7: Yes, it's a goosebump, because even though if I would have been in India, today I would have went for the first show.
6: But you can do that in Dubai as well. What's stopping you?
7: But right now I am in Abu Dhabi. Far from Abu Dhabi, I am in a western region. So that's the thing. I can support my family, because my family members are there in Dubai, Sharjah. He's with his family, Mr. Manoj.
6: So they will go first day, first show today or what?
7: Yes, if possible. If I get a chance and if I'm got the ticket, means I will definitely ask them to go and watch the movie.
6: Aap to mujhe lag raha hai der ho gayi, Sundar. I don't think you will get any first day, first show tickets, because you know there is a ritual. Forget about people who are from Tamil Nadu, who are like from Rajni sir's land, so to speak. But you know, even North India, mera एक रिचुअल है कि जब भी रजनी सर की फिल्म आती है तो आई डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू गो एंड वॉच इन द सिनेमा हॉल अलोंग विद द फैंस, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट, बिकॉज इट इज वन ऑफ दोस मस्ट डू थिंग्स, राइट?
7: एक
6: अमेजिंग सी एनर्जी होती है सिनेमा हॉल के अंदर, एंड स्पेशली व्हेन रजनी सर मेक्स दैट
7: वाइब. यू कैनॉट स्टॉप द वाइब व्हेन द सुपरस्टार लाइक रजनीकांत और मे बी
6: यू कांट टेक रजनी सर्स नेम विद एनीबॉडी एल्स. ही इज रजनी सर एंड देयर इज अदर पीपल.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
8: स्लो ट्रैफिक अराउंड शेख जायद रोड, अलखेल रोड एंड शेख मोहम्मद बिन जायद रोड. अगर आप जा रहे हो बिजनेस बे वाली साइड या फिर जो मेरा विलेज सर्कल, वहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. अलबर्शा या फिर दुबई साउथ जा रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ देयर इज हैवी कंजेशन. कहीं और फंसे हो, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
9: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: is all we need. And that one love also counts the financial decisions jo hum lene ke kabil hone chahiye.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड फाइनेंशियल डिसीजन से मेरा मतलब है जब आपका मन करे आप क्रेडिट कार्ड कंपेयर करो, पर्सनल लोन्स के बारे में जानो. एंड अगर आपको हेल्प चाहिए ऑल यू हैव टू डू इज कॉल कर सकते हो आप 800 Alfred पर. यू ऑलरेडी नो Alfred फ्रॉम insurancemarket.ae एंड नाउ Alfred कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स एंड mortgages टू. मतलब फाइनेंशियल डिसीजन के साथ जो फाइनेंशियल हेल्थ आपके पास आएगी. पैसा कहाँ जाता है यार, दिमाग में जाता है या दिल में जाता है, दोनों में लगाते हो कि सिर्फ एक चीज पर लगाते हो, बताना जरा मुझे 800-1062 पे कॉल करके. अंटिल देन कल मिलते हैं फिर से द बिग मिक्स 1 to 5. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी 5:07।
1: Bollywood.

0: मेरा सेंसर भी बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
6: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. insurancemarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: It's 34 degrees but feels like 42 thanks to the humidity jo filhal 67% par hai, aaj lo jayega around 30.
9: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: and pizza today. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: एक घंटा चार मिनट का डिले एग्जैक्टली इट इज पैक्ड बम्पर टू बम्पर इफ यू आर अराउंड डीआईएफसी एट द मोमेंट दिस हैवी ट्रैफिक ऑन द जुमेरा रोड स्पेशली इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स उमसुकीम 36 मिनट डिले राइट नाउ अलमनारा अगेन इट इज पैक्ड प्लस इफ यू हेडिंग फ्रॉम डिस्कवरी टू फुरजान टेकिंग अलासायल आपको काफी वक्त लगने वाला है फिलहाल एक 27 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो हेस स्ट्रीट में पैची ट्रैफिक नॉट रियली बैड दो यू माइट फाइंड अ बिट Near City Center Miasim. Iske alawa, I don't see any traffic. Hesa Street pe surprisingly aaj sham. Anything else you'd like to report? Mujhe bataiye 800-1062 par.
3: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
4: Sardar Khan naam hai hamara. Bata dijiyega sabko.
5: Goli nahi marenge saale ko. Keh ke lenge uski.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Epic Thriller Mansi, we are karaoke-ing.
1: Karaoke.
0: आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी. गाड़ी में बैठे बैठे, ट्रैफिक में फंसे फंसे अपना कॉन्सर्ट होस्ट करने का मौका. ऑल यू हैव टू डू इज गेस करना ये गाना, विच इज पिक्चराइज्ड ऑन सलमान खान एंड करिश्मा कपूर. है कौन सा एसपी सर की आवाज है? आमिर खान, रवीना टंडन, वेयरिंग दोज अडोरेबल नाइट सूट्स. अगर ये गाना याद आ गया, 800-1062 is the number to dial. वैसे कारियोकी करने के लिए कार का होना बहुत जरूरी है. If you're looking for one, you can now lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prizes starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. What are you waiting for? Visit selfdrive.ae for more details. Terms and conditions do apply.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: जो लोग कहते हैं ना कि मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी, वो आपके और मेरे जैसे नहीं है. मनी मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी. आई लव लव लव पैसा, स्पेशली वो पैसा अगर बिना मेहनत के आ जाए. वैसे ये मेरी किस्मत में तो फिलहाल नहीं आ रहा है, बट आपकी किस्मत में आने वाला है. गुड इवनिंग, आई एम नांसी. दिस इज द बिग थ्रिल ऑन बिग 106.2. योर चांस टू विन बिग कैश फ्रॉम दिस मंडे 19th ऑफ अक्टूबर. योर शेयर Of 30,000 dirhams, the big cash call is back. Purely gut pe jana hai. Agar sahi time pe stop bola, to bas paisa hi paisa hoga. Presenting sponsors, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Powered by Big Ticket. So do not forget, the big cash call is calling you from this Monday on Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi. While you're heading back home every single evening, जब आप traffic jam में अटकते हैं, हम यहाँ पे jam करते हैं. The only platform for bathroom singers.
0: Karaoke.
1: फिलहाल आ गए इमरान. गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड सर, आप कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन?
2: दिन बस वीकेंड का वेट कर रहे हैं. कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा.
1: क्यों, कल क्या है साहब?
2: कल कल्चर डे बना रहे हैं हमारे ऑफिस में, वो एंजॉय करना है.
1: तो कल काम नहीं होगा, ऑफिस के पैसे पे लंच होगा, उसके मजे कुछ और होते हैं.
2: ऑफिस
1: वाले चाय समोसे भी खिला देना, वो फीलिंग अलग होती है. फिलहाल इमरान, करते क्या आप?
2: मैं HS इंजीनियर हूँ.
1: ओह, वेरी वेरी नाइस. एंड इंजीनियरिंग के साथ साथ आप गाने का भी शौक रखते हैं, आई एम गेसिंग?
2: कभी कभार.
1: चलो जी, आज सुन लेते हैं कि इमरान की आवाज में कितना दम है. क्या ये दिल तक पहुँचेगी या फिर आगे नहीं बोलूंगी मैं,
2: पता नहीं कहाँ तक.
0: Karaoke.
1: अच्छा इमरान, ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट गाना है. आई एम अ बिग फैन ऑफ SP बालासुब्रमण्यम. तो बड़ा कमाल गाना है, तो ऑल द वेरी बेस्ट. आपका ट्रैक है
2: ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी. ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी. के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना गिए जाए हिचकोले. के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले.
1: कहना चाहूँ तुमसे, मैं तुमसे कितनी बातें,
2: कितनी बातें,
1: किस हसरत में काटी है, काटी इतनी रातें,
2: इतनी रातें.
1: छत पर
2: शकल
1: दिखला जा. सही है, अगर आपने छत पे ऐसे बुलाया ना, तो उसके साथ उसके अब्बा भी आ जाएंगे और आपके लिए अच्छा नहीं होगा. इमरान, गाना बहुत अच्छा है, आपने कोशिश बहुत अच्छी करी, बट क्या है कि सुर डिसिप्लिन थोड़ा हिला हुआ है, बट मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है.
2: बहुत ज्यादा, बिल्कुल. मेरी वाइफ को मैंने भेजा था ये गाना जस्ट हमारी शादी के एक दिन पहले.
1: खुद गा के भेजा था?
2: हाँ, खुद गा के भेजा था, क्योंकि हमारी वेटिंग पीरियड चल रहा था कि कल शादी है और बस आज रात को हम दोनों बस बात कर रहे थे.
1: ये रात ये दूरी अच्छा है. अगर ये गाना आपकी आवाज में सुन के भी उनसे शादी की, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है. उन्हें जाने मत देना कहीं. बट इमरान, बहुत मजा आया, बड़ा कमाल गाना है, आपने बड़ा माहौल सेट किया. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू मानसी.
1: बाय
2: बाय.
1: ये कारियों की हम यहाँ पे माहौल जमाते हैं. गाना आए या ना आए, अगर आपने गाना है, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 6:08।
2: बॉलीवुड।

0: इसी स्टेज पर यू गेट टू विटनेस द मैजिक दैट इज कैलाश खेर।
1: मेरी जान है,
0: ओए
1: तू मेरा अरमान है।
0: ऐसी शाम जब दो लेजेंडरी आवाजें एक साथ एक ही स्टेज पर होंगी। पैंथियन आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग आबिदा जी इन साथ में कैलाश खेर साहब, टू लेजेंड्स वन स्टेज। Make sure you get your tickets right now. This is happening on the 13th of November at the Dubai World Trade Center. Tickets are available platinum list pe. Don't wait, book right now before they are sold out. Brought to you by Hop Events, creating experiences that stay with you long after the music ends, and this 100% will stay with you. Event is made large by us, so big 106.2. That means very, very soon, aapko yahan bhi tickets jeetne ka mauka milega.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill of Mansi. We're playing the 5-second rule and joining us is Hema. I called her Hema Ji. She said, "Main Gen Z hoon. Please, mujhe Hema Ji mat bolo." तो ये कौन है हेमा मालिनी का फैन? दादी, दादा, मम्मी, पापा?
2: ये मेरी मासी।
1: तो आप खुश हैं मासी के इस डिसीजन से कि आपका नाम हेमा रखा है?
2: बिल्कुल भी नहीं।
1: यार मैं समझ गई हूँ। पता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भी अपने नाम से खुश नहीं थी। मुझे लगता था बड़ा पुराना सा नाम है।
2: बट नहीं, आपका नाम तो फिर भी लाइक अच्छा है।
1: नहीं, आपका नाम भी बहुत अच्छा है। किसने बोला हेमा नाम अच्छा नहीं? हेमा जी स्टनिंग।
2: कोई भी सुनता तो वो उनको लगता है कि मैं ओल्ड एज कुछ लाइक 80 इयर्स ओल्ड ऐसे करके कुछ हूँ।
1: ऐड भी है ना वो हेमा, जया और सुषमा। ये पता भी नहीं होगा बेचारी, ये जेन जी बच्चा है, इसको पता भी नहीं होगा मैं क्या बोल रही हूँ। इसका नाम हेमा रख दिया है। फिलहाल हेमा, व्हाट डू यू डू?
2: I'm in HR department. I'm working as onboarding specialist.
1: तो आप जो डिसाइड करती हैं कि कितनी सैलरी दें, कैसे हम बुद्धू बनाएं एम्प्लॉय को, है ना?
2: Yes, yes.
1: ये देखो, yes भी बोल रही, कैसे बुद्धू बनाएं। फिलहाल we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें हेमा बतानी है 5 सेकंड के अंदर। All the best.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly name 3 things that start with the letter R.
2: Rat, river and
1: things,
2: rose.
1: Things. River is not a thing.
2: Oh, rose.
1: हो गया बेटा, टाइम खत्म हो गया, फटाफट खेलना है। अब आप जेन जी हो तो 3 सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवीज।
2: शेरशाह
1: और
2: देन
1: उयो
2: शेरशाह सुन रूप तैयार।
1: 5 सेकंड कब के खत्म हो गए हेमा?
2: ओके,
1: 3 things दैट यू एब्सोल्युटली डू नॉट लाइक अबाउट योर जॉब।
2: पंक्चुअलिटी, attendance and
1: HR कह रहा है attendance और punctuality. Very nice. I want a Gen Z HR. मुझे भी Gen Z HR चाहिए।
2: Yeah, I'm the cool one.
1: I love Gen Z's. हमारा HR कैसा हो? सिर्फ और सिर्फ Gen Z हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 3 गाने जिनमें दिल आता है।
2: दिल है कि मानता नहीं।
1: ये पापा बता रहे हैं?
2: नहीं, दिल है कि मानता नहीं।
1: नहीं, दिल खत्म हो गया है। ये कौन बता रहा है पहले मुझे ये बताओ। पापा नहीं है तो कौन?
2: My partner.
1: शर्माते हुए, मैंने गलती से पापा बोल दिया। पार्टनर, बॉयफ्रेंड भी नहीं, पार्टनर। वेरी नाइस। 3 things अबाउट योर पार्टनर दैट यू वुड लाइक टू चेंज।
2: आई वुड लाइक टू चेंज हिज बिहेवियर, हिज गिफ्ट।
1: खत्म हो गया टाइम, 5 सेकंड खत्म हो गया। गिफ्ट मतलब खराब गिफ्ट देते हैं ये आपको?
2: हाँ, बहुत खराब।
1: सबसे खराब गिफ्ट क्या दिया है?
2: सबसे खराब गिफ्ट, हाँ, मेरे को गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था, मुझे पसंद ही नहीं आया डिजाइन।
1: ये देखो दुनिया, गोल्ड का ब्रेसलेट दिया है बंदे ने, कह रही है कि मेरे को डिजाइन पसंद नहीं आया।
0: 5 second rule.
1: इसे कहते हैं कि लोगों को कदर ही नहीं है और यहाँ पे जो है हम एक प्लास्टिक का ब्रेसलेट लेने को भी तैयार है। बहुत खराब खेला हेमा, बहुत खराब खेला। एक भी जवाब 5 सेकंड के अंदर नहीं था। सोने का ब्रेसलेट देने वाला बंदा मिला आज के जमाने में। प्लीज संभाल के रखो ना। हैव अ ग्रेट इवनिंग। आपने खेलना है तो 800-1062 मेरा नंबर है, फोन उठाओ, नंबर घुमाओ।
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi and Monday से वक्त जज्बात माहौल बदलने वाला है. पी से प्यार मिले या ना मिले, पी से पैसा मिलेगा. The Big Cash Call begins this Monday. Your chance to win your share of 30,000 dirhams. अब आप दिल की सुनते हैं कि दिमाग की, क्योंकि दिल बोलेगा कि रिस्क लेते हैं, दिमाग बोलेगा रुक जाते हैं. दिल और दिमाग की इस लड़ाई के बीच जो सही वक्त पे बोलेगा STOP stop is going to walk away with a lot of cash. Like I said, your share of 30,000 dirhams. Presenting sponsors Skechers, title sponsor Papa John's, powered by Big Ticket. Get ready to win big cash from Monday right here on Big 106.2, the Beat of Bollywood.
0: Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, 6 p.m. onwards, join Team Big at Oasis Mall, Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's. Powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2. A part of Fun Asia's global media network.
3: CreditMarket.ae. You know me from InsuranceMarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. CreditMarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
4: Subha uthte hi apne aalishaan ghar se sea facing me. फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आज अगर हम इसे याद करें हंसेंगे।
1: डे टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zuleika Hospital and Papa John's.
3: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
4: Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Okay, we get it.
6: Papa John's new pan pizza was so good. It's got cheese on top, on the sides, even at the base.
5: It's the fourth time you're saying that.
6: It's got crispy garlic parmesan crust and edge-to-edge toppings, too.
5: Please don't encourage him.
6: Papa John's new pan pizza is out of this world.
5: Man, now I want pizza.
7: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parks dealer in the Middle East.
0: 33 degrees है, लो जाएगा around 30, but pretty humid.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: The thrill of the festive and the wedding season is here, and uske saath, I'm sure the excitement to get yourself a brand new lehenga, a brand new narkali, anything and everything when I talk about desi wear, you will find at Kora and Bawri. They've got a stunning, stunning collection. Mehndi ho, cocktail ho, Karwa Chauth, Bhai Dooj, Diwali, they will sort you out. And बहुत ही amazing collection है. I was there yesterday and I was in awe. In fact, मैंने अपने लिए वही outfit लिया है जो रानी मुखर्जी ने मुझसे दोस्ती करोगे में उस गाने में पहना था. सावली सी एक लड़की. I'm telling you, they've got a beautiful collection. Cocktail, mehndi, engagement, they will sort you out. Even for men, they've got lovely sherwanis and kurtas. So do visit Bawri and Kora. They are at Meena Bazaar. Celebrate every special moment in style with Bawri and Kora. Right now, also giving you a chance to win a 500 dirham voucher courtesy of Bawri and Kora. बहुत ही सिंपल है. अगर आप ये जीतना चाहते हैं, मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे बावरी एंड कोरा अपना नाम टू 0543091062. मैं आपको हिंट्स दूंगी ऑफ अ स्टनिंग आउटफिट जो आपको बावरी एंड कोरा पे ही मिलेगा. आपने गेस करना है द आउटफिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर, ये 500 दिरहम का वाउचर आपका हो जाएगा टू गो एंड शॉप बावरी एंड कोरा पे दिस वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन.
1: Participate in Bawri and Beju Bawra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bawri voucher. Only on Big 106.2.

96.2 The Beat of Bollywood. शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार. From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हांजी, ये है बिग थ्रिल मानसी। इट्स द फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन है एंड इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। यू हैव अ चांस टू विन अ 500 रुपीस वाउचर टू शॉप एट बावरी एंड कोरा। दे हैव गॉट एन अमेजिंग कलेक्शन बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। दे आर लोकेटेड एट मीना बाजार एंड फिलहाल रैंडमाइजर ने ढूंढ लिया है अपूर्वा को। हाय अपूर्वा।
2: हाय मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड। हैप्पी नवरात्रि।
2: हैप्पी नवरात्रि।
1: तो अपूर्वा, आपके भाई की शादी है?
2: यस।
1: कहाँ है शादी?
2: नेक्स्ट मंथ। इंडिया में, जयपुर में।
1: जयपुर में। भाभी कैसी है? खुद की पसंद की है कि भाई के पसंद की है?
2: भाई के पसंद की है।
1: ज्यादा खुश नहीं लग रही है पूर्वा? तो शॉपिंग अगर जीत गई वाउचर तो अपने लिए करेगी, भाभी को कुछ नहीं मिलता।
2: नहीं नहीं, मैं अपने लिए लूंगी, मेरी भाई की शादी है।
1: मैंने खुद ही बोल दिया कि भाभी के कुछ नहीं मिलने वाला है, पूर्वा अपनी शॉपिंग करेगी। तो क्या पहनने का मन है? व्हाट आर यू प्लानिंग टू वेयर?
2: मुझे इंडो वेस्टर्न चाहिए।
1: इंडो वेस्टर्न चाहिए। भाभी और भाभी की फैमिली को जलाने का पूरा प्लान है अपूर्वा का।
2: यस।
1: यू विल फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड दिस फेस्टिव सीजन एट बावरी एंड कोरा। वेरी वेरी सिंपल, यू विल हैव टू अर्न दिस। मैं आपको दूंगी कुछ हिंट्स, आपने गेस करना है द आउटफिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है अपूर्वा?
2: ओके,
1: ऑल द वेरी बेस्ट।
0: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2.
1: मैं cocktail से लेकर sundowner तक men and women दोनों के festive wardrobes का हिस्सा हूँ। मैं usually knee length होता हूँ और different bottoms के साथ pair किया जाता हूँ। फेरे हो, भाई दूज हो, कोई भी festive celebrations हो, मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न से सजाया जाता है। बहुत कंफर्टेबल हूँ, स्टाइलिश भी हूँ सेलिब्रेशंस के लिए।
2: कुर्ता? मैं
1: बिल्कुल सही जवाब। भाभी को तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि ननंद जो है अब वो जलाने वाली है विद द स्टनिंग आउटफिट फ्रॉम बावरी एंड कोरा। बहुत मजा आने वाला है। तो कब है शादी?
2: शादी है 23 नवंबर।
1: अरे आई गई यार, तो मतलब बस अब जाना ही पड़ेगा बावरी एंड कोरा शॉपिंग करने। तो भाभी से व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे बनती है कि अभी तक आईडी नहीं किया है? मुझे कितना इंटरेस्ट है,
2: अच्छी है।
1: मैं बिगानी शादी में मैं फालतू दीवानी हो रही हूँ कि कोई कलेश हो रहा है कि नहीं, मैं पूछूं।
2: पसंद भाई की है, लव मैरिज है, लेकिन भाभी।
1: चलो कोई बात नहीं, अब दिल रखने के लिए बोल ही दो भाभी। अच्छी है। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी नवरात्रि।
2: थैंक यू सो मच।
1: बाय अपूर्वा।
2: बाय बाय।
0: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: 92. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Mix miss kiya gaya.
5: Tum kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
6: Hi Ahmed.
7: Hi Amin.
6: So kya choose karoge Ahmed aap? Malai kofta ya kadi chawal?
7: Malai kofta.
6: Malai kofta ya fir mushroom masala?
7: Mushroom masala.
6: Mushroom masala ya soya chaap?
7: Mushroom masala.
6: Mushroom masala ya dal makhni?
7: Dal makhni.
6: Dal makhni ya butter chicken?
7: Butter chicken.
6: Butter chicken ya butter chicken biryani?
7: बटर चिकन
6: या मटन बिरयानी?
7: मटन बिरयानी।
6: मटन बिरयानी के ऊपर क्या जाएगा, मटन बिरयानी या ओट्स?
7: अभी तो मटन बिरयानी, ओट्स नहीं।
6: आपने कहा था कि आपकी वाली बहुत अच्छी बनाती है, मुझे लगा शायद आप उनकी डिश ऊपर चूज कर लो।
7: नहीं नहीं, मटन बिरयानी में बेहतरीन लाजवाब बनाती है।
6: तो इसीलिए आपको चूज नहीं करना पड़ा, कि कोई बात नहीं, दोनों में ही उनकी तारीफ हो रही है।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: Still a 38-minute delay. अगर आप शेख जाते हैं DIFC Business Bay, it is packed. Plus, if you're heading to Sharjah, taking the Sheikh Mohammed bin Zayed, it is still very slow moving, heavily congested है. आपको almost एक 30 से 35 मिनट का डिले वहां भी मिलेगा. The northbound lanes approaching Abu Hail, the Sharjah border, Al Nahda. Massive tailbacks right now. Alkuz ke paas, if you're taking first Alkhail, dono direction se aapko traffic milne wala hai. Filhal, Jumeirah road pe itna traffic nahi hai, but haan, ek 8 se 10 minute ka delay wahan bhi. Heavy traffic right now, if you're taking the Sheikh Mohammed bin Zayed, Marif, Mohisna, near International City and Silicon Oasis as well. Plus traffic going towards Al Barsha South, a bit patchy right now. Anything else you'd like to report, mujhe bata sakte hain 800-1062 par.
2: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
8: नहीं, ये तो मुफ्त है.
5: Good. क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Greg. Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present Nayi Naveli, starring Yami Gautam, Adinath Kothare, Sunita Rajwar and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
3: Still stuck in your old

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। फ्रॉम ग्रेसफुल कुर्ताज एंड मजेस्टिक शेरवानीज टू इंट्रिकेटली क्राफ्टेड साड़ीज, लहंगाज एंड सलवार सूट्स, रीडिफाइन एथनिक स्टाइल वेदर इट्स फॉर हिम और हर। गेट फेस्टिव, गेट फैबुलस एट बावरी एंड कोरा एट मीना बाजार, योर फेवरेट वेडिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
5: Creditmarket.ae. Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
7: नहीं, ये तो मुफ्त है।
6: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
1: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
9: नाम।
10: Money follows, my brother.

0: ज्यादा पगला दूंगा पूरे देश को।
1: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
2: बिग 106.2

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4? 4। कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।